पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: वजीर पाक सऊदी लागापन के वधीक मजबूत बनाने वारो अजम जो फरजायो हज जा बेहतरीन इंतजाम करण ते थोरा मनिया।
1: सीनियर सूबाई वजीर शहजी रिना मेमर साहब वफाकी वजीर राना मोहम्मद कासिम नून की मुलाकात आजाद कश्मीर की सूरतहाल ए कौमी यकजहती बाबत ख्याल की देवट वाल कश्मीर में इंसानी हक की भंज कर मजहब पार्लियामेंटी कमेटी ए सिंधु हुकूमत विच में सहकार के मजबूत बनाने से इतफाक शहजी रिना मेमर चाहिए तो कश्मीर जड़े कौमी मुफाद से वफाकी सूबाई इदारन में राबता ए हम आहंगी अड़तर है कश्मीर मसलो पाकिस्तान की परदेही पॉलिसी जो अहम हिस्सो है।
0: लाहौर में परडेही औरतन के अगवा बाद ज्यादती करण वाले केस में गिरफ्तार नायब वजीर आजम एसाक डार जे डोटरे मोहम्मद रजा डार समेत चार जना अदालत में पेश पुलिस रजा डार हसन रजा सिकंदर खान साजिद अली के अदालत में पेश कयो जांच ऑफिसर पारां अदालत के जवाबदारन जो 14 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड ॾियण जी इस्तदा अदालत रज़ा डार समेत चइनी जवाबदारनि खे 4 ॾींहनि जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। 28 जुलाई ते पेश करण जो हुकुम औरत खिलाफ़ आज़ा अगवा ऐं ज़्यादती जो केस दाख़िल करायो आहे। पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं मुबैना तौरु अगवा थियल ॿिन्ही औरतनि खे बाज़ियाब करायो हो।
1: कराची में बाहि सबब सड़ी रख थियल गुल प्लाज़ा जे पुलिस चालान ते प्रोसिक्यूशन जा एतिराज़ बरक़रार चालान अणपूरो करार ॾींदे केतिरनि ई खामियुनि जी निशानदेही करे छॾी। अदालती जांच खे चालान जो हिसो न बणाइण ते बि एतिराज़ कयो वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त प्रोसिक्यूशन एमरजेंसी गेट्स बंदि हुजण बाबति जांच नाहे कई। हिक दुकान जी जॻह ते ॿ दुकान ठाहिण वारो मामिलो बि नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। प्रोसिक्यूशन जे एतिराज़नि ते DIG ॾखण इजलास सॾाए वरितो।
0: दादू जे इलाइक़े रुकण भरसां ॻोठ जबीर जे हथियारबंदनि जी फायरिंग हिकु ॼणो क़तल माक़ूल याकूब पुट यूसुफ चांडियो जो लाश इस्पताल मुंतकिल वारसनि मौजूब अली मोहम्मद ऐं बचल चांडियो फायरिंग करे नौजवान खे क़तल कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे।
1: मंजूराबाद वेझो मांझंद में बदमनी ऐं मंशियात जे विकिरे ख़िलाफ़ SUP जी रैली ऐं धरणो SUP कारकुननि शाही बाज़ार खां रैली कढी मेन चौक ते धरणो हुयो। मुजाहिरनि चयो त पुलिस जी नाअहलीअ सबबि मांझंद तालुके में मंशियात जो आज़ार वधी वियो आहे। नौजवान नसुल तबाह थी रहियो आहे। पुलिस मंशियात फरोशनि सां बिट बणियल आहे।
0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि क़ौमी अवामी तहरीक जा पाणी खोट ऐं सिंध जे ॿियनि मसलनि ख़िलाफ़ मार्च ऐं धरणा। दादू में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मार्च करे धरणो हयो वियो। कंबर में बि क़ौमी अवामी तहरीक सिंध जे ॿरंदड़ मसलनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अॻवाणनि जो सिंध ख़िलाफ़ का बि साज़िश क़बूल न करण जो ऐलान।
1: ऐं मिया साहब सां नेशनल हाईवे ते ट्रक खानगी इस्पताल सां टकराइजी वई। ॿ ॼणा फौत। सखर खां कोयटा वेंदड़ ट्रक ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी इस्पताल सां टकराइजी वई। हादसे में ट्रक ड्राइवर असदुल्ला पुटु मोहम्मद यूसुफ बिरोही ऐं नासिर पुटु रोहेल बिरोही फौत थी विया।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
3: स्किन केयर के लिए दुनिया भर में खवातीन का अव्वलीन इंतखाब फाइजा ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल अज्जा आपकी स्किन को रखे हेल्थी, खूबसूरत और जवान। फाइजा ब्यूटी क्रीम
4: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू कुदरती मजबूती का न्यू लुक।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सच।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ਸਨ ਤੇ ਥੋਰੂਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਆ ਸਕਰਾਂ ਸਜਣ ਮੋਜੇ।

0: घर भातियुनि जा बर तहरा ईरान तकरीबन असांजा सभु शर्त मञण जे लाइ राज़ी थी वियो आहे। ईरान जो नओं रडार सिस्टम बि तबाह करे छॾियो। हाणे ईरान वटि को बि रडार सिस्टम न आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पाकिस्तान ऐं भारत में जंगी रुख खे 3 करोड़ इंसाननि जूं जानियूं बचायूं। इसराइल में बि सभ खां वधीक मां मक़बूल आहियां।
1: इसराइल अमेरिका ईरान ॻाल्हियुनि दौरान ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी ऐं स्पीकर मोहम्मद बाकिर खे क़तल करण जो मनसूबो जोड़ियो हो। अमेरिकी मीडिया जे रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट ऐं न्यूयॉर्क टाइम्स पंहिंजे रिपोर्ट्स में ॼाणायो आहे त अमेरिका पारां इसराइली मनसूबे बाबति विच ओभर जे मुल्कनि खे आगाह कंदे अब्बास ऐं इराकी ऐं बाकिर खे महतात रहण बाबति चयो हो। इसराइली रथाबंदीअ जो मक़सदु अमेरिका ऐं ईरान विच में जंग बंदी ॻाल्हियुनि खे रोकणु हो।
0: वज़ीर-ए-आज़म गैर मयारी सिरिंजिस जे इस्तेमाल ऐं तयारीअ ते पाबंदी लॻाइण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि मुख़्तलिफ़

0: मर्ज़नि जी रोकथाम बाबति इजलास, एड्स ऐं हेपाटाइटिस समेत ॿियनि बीमारियुनि जी रोकथाम जे लाइ खयल क़दमनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज़ शरीफ़ चयो त गैर मयारी सिरिंजिस जे इस्तेमाल ऐं तयारीअ ते पाबंदी लॻाई वञे। क़ौमी सतह जी गॾियल हिकमत अमली असराइते तौर लागू थियण सां ई मसइलो हल थींदो। आलमी भाईवारनि जी मदद इंतिहाई ज़रूरी आहे।
1: बलूचिस्तान जे शहर कोयटा खां पिशावर वेंदड़ मुसाफ़िर बस हादसे जो शिकार, 40 मुसाफ़िर फोत, 8 ज़ख़्मी, फोतियुनि जे अंग में वात जो खसियो। कोयटा खां पिशावर वेंदड़ बस बलूचिस्तान ऐं केपीके जे सरहदी इलाइक़े दानासरा में हादसे जो शिकार थी वई। फोतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। मक़ामी इंतिज़ामिया मूजिब मुसाफ़िर बस खाई में किरण सबबि वधीक जानी नुक़सान थियो आहे। फोतियुनि जा मड़ ऐं ज़ख़्मी खे मक़ामी इस्पतालनि ॾांहुं मुंतकिल कयो वियो आहे।
0: हुकूमत वापारी बिरादरी जा मसइला हल करण जे लाइ संजीदा आहे। वापारियुनि जा मसइला हल करण जे लाइ कमु करे रहिया आहियूं। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स जी उगाड़ीअ जे लाइ वापारी ऐं चैम्बर्स FVR जो साथ ॾियनि। ईरान जंग सबबि व्याज जी शरह में मामूली वाधि थी, महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जी कोशिश कयूं पिया।

0: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जी जिदा में मके के वक्ती गवर्नर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ए शहजादे सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात कई। मुलाकात दौरान जिदा जो गवर्नर ए बया शाही खानदान जा फर्द भी मौजूद हुआ। घरू वजीर पाक सऊदी लागापन के मजबूत बनाने वो अजम वरजाया वो हज जा बेहतरीन इंतजाम करते थोरा मनिया।
1: सीनियर सूबाई वजीर शहजीर इनाम महमूद सा वफाकी वजीर राना मोहम्मद कासिम नून की मुलाकात। आजाद कश्मीर की सूरत हाल ए कौमी यकजहती बाबत ख्याल की डे वालर कश्मीर में इंसानी हकन की भंजकड़ की मजहबत पार्लियामेंट कमेटी ए सिंध हुकूमत विच में सहकार के मजबूत बनाने से इतफाक। शहजीर इनाम महमूद तो कश्मीर जड़े कौमी मफाद से वफाकी सूबाई इदारन में राबता ए हम आहंगी अणटर है। कश्मीर मसलो पाकिस्तान की परदेही पॉलिसी जो अहम हिस्सो है।
0: लाहौर में परदेही औरतन के अगवाबाद ज्यादती करण वाले केस में गिरफ्तार नायब वजीर आजम एसाक डार जे डोटे मोहम्मद रजा डार समेत चार जना अदालत में पेश। पुलिस रजा डार हसन रजा सिकंदर खान साजिद अली के अदालत में पेश कयो। जांच ऑफिसर पारा अदालत के जवाबदारन जो 14 दिन जो जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। अदालत रजा डार समेत चैनी जवाबदारन के 10 दिन की जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छो। बीहर 8 जुलाई से पेश करण जो हुकुम। नेंदर लीड जे औरत रजा डार समेत पंजन जणन खिलाफ अगवा ज्यादती जो केस दाखिल करायो आहे। पुलिस गुजरियल डीहन मुबैना तौर अगवा थियल बिन्ही औरतन के बाजियाब करायो हो।
1: कराची में बाहि सबब सड़ी रख थियल गुल प्लाजा की पुलिस चालान से प्रोसिक्यूशन का एतराज बरकरार। चालान अणपूरो करार डींदे केतरी खामियों की निशानदेही कर छी। अदालती जांच के चालान जो हिस्सो न बणाने से भी एतराज किया वो। जरियन में चवण है प्रोसिक्यूशन एमरजेंसी गेट बंद होने बाबत जांच न कई। एक दुकान की जगह से ब दुकान ठाने वो मामलो भी नजरअंदाज किया वो है। प्रोसिक्यूशन के

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।
3: It's 2:15 PM.
4: This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
1: Sakran ke ho, to aawaz bhi sakran ki hai.
2: Sunte raho GFM 90.8.

0: इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की। बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारिम को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ਜਾ ਪਾਣ ਮੇ ਕਈ ਰੂਹ ਰਿਹਾ।

पक्षियां भूए सी पंजो फराक सजाना जो।

तहरान एयरपोर्ट जा मंजर मांखे ॾेखारे पिया। ईरानी घरू वज़ीर सिकंदर मोमिन पारां फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो आदर भाव कयो वियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।